साय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चरैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।